अंदाजा तकरीबन 3.15 मिलियन है, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 6.8% कम है। ये जनवरी 2022 के बाद सबसे बड़ी कमी है। जून के महीने में चीन से आने वाले मुसाफिरों की तादाद 50% से ज़्यादा कम रही। हांगकांग और भारत से आने वाले मुसाफिरों की तादाद में 20% से ज़्यादा का इजाफा हुआ, लेकिन ये इजाफा चीन और दीगर ममालिक से आने वालों की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं था। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबल इनाम हासिल करने वाले पहले जापानी तोनेगावा सुसुमो 11 जुलाई को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने यह ऐलान बुध को किया। तोनेगावा ने वहां प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी हैं। तोनेगावा सुसुमो ने 1987 में इस बात से पर्दा उठाकर नोबल इनाम जीता कि जिस्म किस तरह एंटीबॉडीज तैयार करता है, जो एक मुदाफ़ियती अमल है। तोनेगावा वस्ती जापान में आईची प्रिफेक्चर के शहर नागोया में पैदा हुए। उन्होंने क्योटो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और स्विट्ज़रलैंड के बासिल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी में तालीम हासिल की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट तोनेगावा ने जीनियाती सतह पर मुदाफ़ियती निज़ाम के तरीक़ेकार का खोज लगाने पर काम किया। उन्होंने एंटीबॉडी तनवो की देरीना गुत्थी को सुलझाकर नुमायां तवज्जो हासिल की। उन्होंने दरियाफ्त किया कि मुदाफ़ियती निज़ाम वायरस, बैक्टीरिया और दीगर पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की वसी अकसाम पैदा करता है। नोबल इनाम जीतने के बाद तोनेगावा MIT में दिमागी अफ़ाल का खोज लगाने लगे। अपनी मौत से कबल के सालों में वो याददाश्त के तरीक़ेकार जैसे मौजूआत पर तहकीक में मसरूफ़ थे।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान ने शाही घराने के भविष्य को नया स्वरूप देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। संसद ने शाही घराना कानून में संशोधन करता विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें विवाह करने और गोद लेने से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। करीब 75 वर्षों में ये इस कानून के मुख्य भाग में पहला संशोधन है। शाही घराने में इस समय सम्राट नारुहितो और 15 अन्य सदस्य हैं। मूल कानून के अनुसार शाही खानदान से बाहर शादी करने पर महिला सदस्यों को राज परिवार छोड़ना पड़ता है। ऐसी आशंका है कि एक दिन सम्राट के आधिकारिक कर्तव्य निभाने में सहयोग के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं बचेंगे। एक अन्य मुद्दा शाही गद्दी का सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के अनुसार राजगद्दी पर शाही घराने में पैतृक वंश की पुरुष संतान का ही अधिकार है। इस समय केवल 3 सदस्य ही इसके योग्य हैं। नए कानून के तहत महिला सदस्य विवाह के बाद भी शाही परिवार में बनी रहेंगी। नया कानून शाही परिवार की पूर्व शाखाओं के पैतृक वंश के पुरुष वंशजों को गोद लेने की अनुमति भी देता है। ऊपरी और निचले सदन की समितियों में एक पूरक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या बढ़ने के आधार पर सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के तरीकों का निरंतर अध्ययन करने का आह्वान किया गया है। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेइतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है, जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए

कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। जापान की एक नई कंपनी नोएत्रा का कहना है कि वो अमेरिकी सेमीकंडक्टर दिग्गज एनवीडिया के नवीनतम चिप्स से लैस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए फिजिकल एआई की बुनियादी प्रौद्योगिकी विकसित करेगी। फिजिकल एआई आसपास के माहौल को समझते हुए स्वायत्त निर्णय लेकर रोबोट और अन्य प्रणालियों का संचालन करती है। इसे श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे विनिर्माण क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में अपनाए जाने की उम्मीद है। सोनी ग्रुप, सॉफ्टबैंक, एनईसी, होंडा मोटर और अन्य प्रमुख कंपनियों ने स्वदेशी एआई विकसित करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर नोएत्रा की नींव रखी थी। नोएत्रा उन इकाइयों में से एक है जिन्हें जापान के उद्योग मंत्रालय ने फिजिकल एआई का एक स्वदेशी बुनियादी मॉडल विकसित करने की परियोजना के लिए चुना है। ये परियोजना 380 अरब येन यानी 2.34 अरब डॉलर से भी अधिक मूल्य की है। अगले साल मार्च में समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ये परियोजना शुरू हो जाएगी। मंत्रालय वित्त वर्ष 2030 तक के 5 वर्षों में 10 खरब येन यानी लगभग 6.15 अरब डॉलर की सहायता भी प्रदान करना चाहता है, जिसका एक हिस्सा इस वित्त वर्ष में आवंटित किया जाएगा।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के बीच बृहस्पतिवार को भी तनाव जारी रहा। अमेरिकी केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने लगातार छठे दिन ईरान पर हमले किए और समुद्री नाकाबंदी भी जारी है। रॉयटर्स ने बताया कि ईरान ने यमन में हूथी विद्रोहियों से लाल सागर तेल मार्ग बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। खबर में कई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने हूथी गुट से कहा है कि अगर अमरीका ईरान की विद्युत अवसंरचना पर हमला करता है तो वो बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करने के लिए तैयार रहे। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में तनावपूर्ण स्थिति के कारण लाल सागर मार्ग इस क्षेत्र से तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बन गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक नया नियम घोषित किया है जिसके तहत विदेशी छात्र वीजा पर अधिकतम 4 साल ही अमरीका में रहा जा सकेगा। वर्तमान में छात्रों को आमतौर पर तब तक अमरीका में रहने की अनुमति होती है जब तक वे छात्र होते हैं। गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस नियम के जारी होने की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव विदेशी छात्रों की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि और ऐसे मामलों को देखकर किया गया है जिसमें छात्र दशकों तक अमरीका में रहने के लिए अपने छात्र वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर जापान के एक शहर में लोगों ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना में एक स्थानीय देवता को खीरे चढ़ाए हैं। फुकुशिमा प्रीफेक्चर के सुकागावा शहर में खीउरी तेन्नो उत्सव हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये शहर खीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस उत्सव का इतिहास लगभग 260 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में प्लेग महामारी फैलने पर लोगों ने एक देवता को खीरे चढ़ाए थे जिससे वे बीमारी से बच गए थे। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर बनी एक वेदी पर आकर 2 खीरे चढ़ाए और बदले में 1 खीरा प्राप्त किया। माना जाता है कि इस खीरे को खाने से आगामी वर्ष में सेहत अच्छी रहती है। शहर की एक 90 वर्षीय निवासी ने कहा कि उसने स्वस्थ रहने की कामना की। उसने बताया कि उसकी सेहत का राज खीरों का सेवन है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेइतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डों गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है？
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी हैं।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वातासी मो
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं, नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी, और
4: इरेनाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं, और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई,
0: तो बन गया
4: इरेनाई देकुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए

0: उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
2: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
2: इरे नाई देकुदासाई, वासाबी वा इरे नाई देकुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
3: ओरेंज जूस 1つ, 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
3: ओरेंज जूस 1つ, 氷は入れないでください。
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
2: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
2: हितोत्सु
1: का अर्थ है एक और
2: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
2: कोरी वा इरे नाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
4: काशिकोमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए।
2: कोरी वा इरे नाई दे कुदासाई, कोरी वा इरे नाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
2: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
2: काकेरु
0: और उसका नाई रूप है
2: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
4: ड्रेसिंग वा काकेनाई दे कुदासाई, ड्रेसिंग वा काकेनाई दे कुदासाई।
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च न डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
2: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
2: त्सुकावानाई, त्सुकावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: तोगाराशी वा त्सुकावानाई दे कुदासाई, तोगाराशी वा त्सुकावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: ओसुसुमे वा नान देसु का?
1: इसमें
2: ओसुसुमे
1: का मतलब है सुझाव। तो
2: ओसुसुमे वा नान देसु
1: का का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोइया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री शाही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान ने शाही घराने के भविष्य को नया स्वरूप देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। संसद ने शाही घराना कानून में संशोधनकर्ता विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें विवाह करने और गोद लेने से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। करीब 75 वर्षों में ये इस कानून के मुख्य भाग में पहला संशोधन है। शाही घराने में इस समय सम्राट नारुहितो और 15 अन्य सदस्य हैं। मूल कानून के अनुसार शाही खानदान से बाहर शादी करने पर महिला सदस्यों को राज परिवार छोड़ना पड़ता है। ऐसी आशंका है कि एक दिन सम्राट के आधिकारिक कर्तव्य निभाने में सहयोग के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं बचेंगे। एक अन्य मुद्दा शाही गद्दी का सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के अनुसार राजगद्दी पर शाही घराने में पैतृक वंश की पुरुष संतान का ही अधिकार है। इस समय केवल 3 सदस्य ही इसके योग्य हैं। नए कानून के तहत महिला सदस्य विवाह के बाद भी शाही परिवार में बनी रहेंगी। नया कानून शाही परिवार की पूर्व शाखाओं के पैतृक वंश के पुरुष वंशजों को गोद लेने की अनुमति भी देता है। ऊपरी और निचले सदन की समितियों में एक पूरक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या बढ़ने के आधार पर सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के तरीकों का निरंतर अध्ययन करने का आह्वान किया गया है। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेइतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है, जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। जापान की एक नई कंपनी नोएत्रा का कहना है कि वो अमरीकी सेमीकंडक्टर दिग्गज एनवीडिया के नवीनतम चिप्स से लैस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए फिजिकल एआई की बुनियादी प्रौद्योगिकी विकसित करेगी। फिजिकल एआई आसपास के माहौल को समझते हुए स्वायत्त निर्णय लेकर रोबोट और अन्य प्रणालियों का संचालन करती है। इसे श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे विनिर्माण क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में अपनाए जाने

की उम्मीद है। सोनी ग्रुप, सॉफ्टबैंक, NEC, होंडा मोटर और अन्य प्रमुख कंपनियों ने स्वदेशी AI विकसित करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर नोएत्रा की नींव रखी थी। नोएत्रा उन इकाइयों में से एक है जिन्हें जापान के उद्योग मंत्रालय ने फिजिकल AI का एक स्वदेशी बुनियादी मॉडल विकसित करने की परियोजना के लिए चुना है। ये परियोजना 380 अरब येन यानी 2.34 अरब डॉलर से भी अधिक मूल्य की है। अगले साल मार्च में समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ये परियोजना शुरू हो जाएगी। मंत्रालय वित्त वर्ष 2030 तक के 5 वर्षों में 10 खरब येन यानी लगभग 6.15 अरब डॉलर की सहायता भी प्रदान करना चाहता है, जिसका एक हिस्सा इस वित्त वर्ष में आवंटित किया जाएगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमरीका और ईरान के बीच बृहस्पतिवार को भी तनाव जारी रहा। अमरीकी केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने लगातार छठे दिन ईरान पर हमले किए और समुद्री नाकाबंदी भी जारी है। रॉयटर्स ने बताया कि ईरान ने यमन में हूथी विद्रोहियों से लाल सागर तेल मार्ग बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। खबर में कई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने हूथी गुट से कहा है कि अगर अमरीका ईरान की विद्युत अवसंरचना पर हमला करता है तो वो बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करने के लिए तैयार रहे। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में तनावपूर्ण स्थिति के कारण लाल सागर मार्ग इस क्षेत्र से तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बन गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक नया नियम घोषित किया है जिसके तहत विदेशी छात्र वीजा पर अधिकतम 4 साल ही अमरीका में रहा जा सकेगा। वर्तमान में छात्रों को आमतौर पर तब तक अमरीका में रहने की अनुमति होती है जब तक वे छात्र होते हैं। गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस नियम के जारी होने की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव विदेशी छात्रों की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि और ऐसे मामलों को देखकर किया गया है जिसमें छात्र दशकों तक अमरीका में रहने के लिए अपने छात्र वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर जापान के एक शहर में लोगों ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना में एक स्थानीय देवता को खीरे चढ़ाए हैं। फुकुशिमा प्रीफेक्चर के सुकागावा शहर में खीउरी तेन्नो उत्सव हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये शहर खीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस उत्सव का इतिहास लगभग 260 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में प्लेग महामारी फैलने पर लोगों ने एक देवता को खीरे चढ़ाए थे जिससे वे बीमारी से बच गए थे। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर बनी एक वेदी पर आकर 2 खीरे चढ़ाए और बदले में 1 खीरा प्राप्त किया। माना जाता है कि इस खीरे को खाने से आगामी वर्ष में सेहत अच्छी रहती है। शहर की एक 90 वर्षीय निवासी ने कहा कि उसने स्वस्थ रहने की कामना की। उसने बताया कि उसकी सेहत का राज खीरों का सेवन है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेईतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: ओसुसुने वा नान देसु का?
1: आपका सुझाव क्या है?
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: कोनो स्पेशल काइसेन डोंग गा ओसुसुमे दा यो।
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी है।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
4: वतशिमो,
1: मैं भी।
4: आ, वासाबी वा इरेनाइदे कुदासाई।
1: आ, वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने?
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वतशिवा वासाबी ओ ताक्सान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है
4: वासाबी वा इरेनाइदे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
5: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी और
5: इरेनाइदे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
5: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
5: इरे नाई
1: क्रिया
5: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
5: देकुदासाई
0: तो बन गया
5: इरेनाइदे कुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
5: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: इरेनाइदे कुदासाई वासाबी वा इरेनाइदे कुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
6: ओरेंज जूस 1つ।

0: 氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
3: पहले आदमी ने कहा,
0: ऑरेंज जूस 1つ, 氷は入れないでください。
2: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
3: है संतरे का रस।
4: 1つ
3: का अर्थ है एक और
4: 氷
3: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा,
4: 氷は入れないでください。
2: जवाब में महिला ने कहा,
1: かしこまりました।
3: जी,
2: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
3: तो अब सुनिए और दोहराइए,
4: 氷は入れないでください。
2: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
2: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
2: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
2: तो कोशिश कीजिए,
1: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
3: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च ना डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
3: उसका नाई रूप है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए,
0: तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई, तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए,
1: おすすめは何ですか?
3: इसमें
4: おすすめ
3: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか?
3: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोईया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
2: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए,
4: おすすめは何ですか?
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
1: おすすめは何ですか?
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは?
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: अब बारी है अंश काइटो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
3: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्सुक सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
2: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
3: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
2: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री साही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
3: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
3: सायोनारा।

0: आपकी खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफे का सिलसिला जुमेरात को जारी रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि उसने मुसलसल छठे दिन ईरान के खिलाफ ताज़ा हमले किए हैं, जबकि उसने बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है। रॉयटर्स ने बताया है कि तेहरान ने यमन में हौसी बागियों से कहा है कि वो बुहैरा अहमर के तेल का रास्ता बंद करने के लिए तैयार रहें। इस रिपोर्ट में मुतअद्दद ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया है कि तेहरान ने मस्कूरा ग्रुप से कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरानी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में वो आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने के लिए तैयार रहे। आबनाए हुरमुज़ में कशीदगी ने बुहैरा अहमर के रास्ते को खित्ते से तेल की तरसील के लिए एक अहम मुतबादल रास्ता बना दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने स्टूडेंट वीज़ा पर क़याम की मुद्दत को 4 साल तक महदूद करने के लिए एक नए ज़ाब्ते का ऐलान किया है। फ़िलहाल तलबा को आम तौर पर उस वक्त तक अमरीका में रहने की इजाज़त है जब तक कि वो कोर्सेज में दाखिला रखते हों। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने जुमेरात को इस ज़ाब्ते की इशाअत का ऐलान किया। महकमे ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद गैर मुल्की तलबा की तादाद में नुमाया इजाफे के साथ साथ कई दहाइयों तक मुल्क में रहने के लिए ऐसे वीज़ों के इस्तेमाल के वाकयात से निमटना है। शिमाल मशरकी जापान के एक शहर में लोगों ने अच्छी सेहत की उम्मीद में एक मकामी देवता को खीरों के नजराने पेश किए हैं। क्यूरी तेन्नो त्यौहार हर साल 14 जुलाई को फुकुशिमा प्रिफेक्चर के सुकागावा शहर में होता है, जो खीरों की पैदावार के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस त्यौहार की तारीख तकरीबन 260 साल पुरानी है। रिवायत के मुताबिक जब इस इलाके में ताउन की वबा फैली तो लोगों ने एक देवता को खीरों का नजराना देकर खुद को इस बीमारी से बचा लिया। मंगल को बहुत से लोग सड़क किनारे कायम एक नज़रगाह पर गए। उन्होंने 2 खीरे पेश किए और बदले में 1 वसूल किया। बावर किया जाता है कि इसे खाने से आने वाले साल के लिए अच्छी सेहत यकीनी बनती है। शहर की एक 90 साल रिहायशी ने कहा कि वो दुआ करती हैं कि सेहतमंद रहें। उन्होंने खीरे खाने को भी अपनी सेहत का राज करार दिया।
1: और सामिन, आखिर में आज की खास खबरों का खुलासा सुन लीजिए। जापान ने शाही ख़ानदान के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पार्लियामेंट ने एम्पीरियल हाउस कानून पर नज़रसानी करते हुए शादी और गोद लेने दोनों से मुतालिक शिकों में तरमीम करने के लिए एक बिल मंजूर किया है। ये 75 साल से जायद अरसे में इस कानून के बुनियादी ढांचे पर पहली नज़रसानी है। जापान की पार्लियामेंट ने कौमी परचम को नुकसान पहुंचाने के अमल को काबिले ताज़ीर बनाने का बिल मंजूर किया है, जिसके तहत जुर्म करने वाले फ़र्द को 2,00,000 तक येन तक जुर्माना या 2 साल की सज़ा हो सकती है। एक नई जापानी कंपनी बड़ी अमरीकी कंपनी NVIDIA के जदीद तरीन चिप से लेस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इस्तेफादा करते हुए फिजिकल AI के लिए बुनियादी टेक्नोलॉजीज तैयार करेगी। खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

में सम्राट नारुहितो और 15 अन्य सदस्य हैं। मूल कानून के अनुसार शाही खानदान से बाहर शादी करने पर महिला सदस्यों को राज परिवार छोड़ना पड़ता है। ऐसी आशंका है कि एक दिन सम्राट के आधिकारिक कर्तव्य निभाने में सहयोग के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं बचेंगे। एक अन्य मुद्दा शाही गद्दी का सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के अनुसार राजगद्दी पर शाही घराने में पैतृक वंश की पुरुष संतान का ही अधिकार है। इस समय केवल 3 सदस्य ही इसके योग्य हैं। नए कानून के तहत महिला सदस्य विवाह के बाद भी शाही परिवार में बनी रहेंगी। नया कानून शाही परिवार की पूर्व शाखाओं के पैतृक वंश के पुरुष वंशजों को गोद लेने की अनुमति भी देता है। ऊपरी और निचले सदन की समितियों में एक पूरक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या बढ़ने के आधार पर सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के तरीकों का निरंतर अध्ययन करने का आह्वान किया गया है। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेइतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। जापान की एक नई कंपनी नोएत्रा का कहना है कि वो अमरीकी सेमीकंडक्टर दिग्गज एनवीडिया के नवीनतम चिप्स से लैस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए फिजिकल एआई की बुनियादी प्रौद्योगिकी विकसित करेगी। फिजिकल एआई आसपास के माहौल को समझते हुए स्वायत्त निर्णय लेकर रोबोट और अन्य प्रणालियों का संचालन करती है। इसे श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे विनिर्माण क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में अपनाए जाने की उम्मीद है। सोनी ग्रुप, सॉफ्टबैंक, एनईसी, होंडा मोटर और अन्य प्रमुख कंपनियों ने स्वदेशी एआई विकसित करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर नोएत्रा की नींव रखी थी। नोएत्रा उन इकाइयों में से एक है जिन्हें जापान के उद्योग मंत्रालय ने फिजिकल एआई का एक स्वदेशी बुनियादी मॉडल विकसित करने की परियोजना के लिए चुना है। ये परियोजना 380 अरब येन यानी $2.34 अरब से भी अधिक मूल्य की है। अगले साल मार्च में समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ये परियोजना शुरू हो जाएगी। मंत्रालय वित्त वर्ष 2030 तक के 5 वर्षों में 10 खरब येन यानी लगभग $6.15 अरब की सहायता भी प्रदान करना चाहता है, जिसका एक हिस्सा इस वित्त वर्ष में आवंटित किया जाएगा।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के बीच बृहस्पतिवार को भी तनाव जारी रहा। अमेरिकी केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने लगातार छठे दिन ईरान पर हमले किए और समुद्री नाकाबंदी भी जारी है। रॉयटर्स ने बताया कि ईरान ने यमन में हूथी विद्रोहियों से लाल सागर तेल मार्ग बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। खबर में कई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने हूथी गुट से कहा है कि अगर अमरीका ईरान की विद्युत अवसंरचना पर हमला करता है तो वो बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करने के लिए तैयार रहे। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में तनावपूर्ण स्थिति के कारण लाल सागर मार्ग इस क्षेत्र से तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बन गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक नया नियम घोषित किया है जिसके तहत विदेशी छात्र वीजा पर

0: अधिकतम 4 साल ही अमेरिका में रहा जा सकेगा। वर्तमान में छात्रों को आमतौर पर तब तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है जब तक वे छात्र होते हैं। गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस नियम के जारी होने की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव विदेशी छात्रों की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि और ऐसे मामलों को देखकर किया गया है जिसमें छात्र दशकों तक अमेरिका में रहने के लिए अपने छात्र वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर जापान के एक शहर में लोगों ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना में एक स्थानीय देवता को खीरे चढ़ाए हैं। फुकुशिमा प्रीफेक्चर के सुकागावा शहर में खीउरी तेन्नो उत्सव हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये शहर खीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस उत्सव का इतिहास लगभग 260 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में प्लेग महामारी फैलने पर लोगों ने एक देवता को खीरे चढ़ाए थे जिससे वे बीमारी से बच गए थे। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर बनी एक वेदी पर आकर 2 खीरे चढ़ाए और बदले में 1 खीरा प्राप्त किया। माना जाता है कि इस खीरे को खाने से आगामी वर्ष में सेहत अच्छी रहती है। शहर की एक 90 वर्षीय निवासी ने कहा कि उसने स्वस्थ रहने की कामना की। उसने बताया कि उसकी सेहत का राज खीरों का सेवन है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेइतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डों गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्ते रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है？
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्ते रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी है।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वातासी मो।
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरे नाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं, नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरे नाई दे कुदासाई।
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी, और
4: इरे नाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरे नाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई,
0: तो बन गया
4: इरे नाई देकुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरे नाई देकुदासाई, वासाबी वा इरे नाई देकुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
4: हितोत्सु
1: का अर्थ है एक, और
4: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
6: काशिकोमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई। कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
0: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च ना डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई। तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मियां की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: おすすめは何ですか？
1: इसमें
4: おすすめ
1: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか
1: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोइया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्सुक सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री साही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

आपकी खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफे का सिलसिला जुमेरात को जारी रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि उसने मुसलसल छठे दिन ईरान के खिलाफ ताज़ा हमले किए हैं, जबकि उसने बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है। रॉयटर्स ने बताया है कि तेहरान ने यमन में हौसी बागियों से कहा है कि वो बुहरा अहमर के तेल का रास्ता बंद करने के लिए तैयार रहें। इस रिपोर्ट में मुतअद्दद ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया है कि तेहरान ने मस्कूरा ग्रुप से कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरानी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में वो आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने के लिए तैयार रहे। आबनाए हुरमुज में कशीदगी ने बुहरा अहमर के रास्ते को खित्ते से तेल की तरसील के लिए एक अहम मुतबादल रास्ता बना